0: ज्ञानी के सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना भेद ब्रह्म ज्ञानी को सलादेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का तथ्य न जाय त्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की जत ब्रह्म ज्ञानी जान
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त ज्योत जी का

0: भगत का रंग सगल त्याग है दुष्ट का संग
1: भक्ते बिन से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पे दिसन प्रीत
0: मर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती

0: पस प्रेत मुगद पाथर को तार
1: सर्व रोग का उपद नाम कल्याण रूप मंगल गुण धाम
0: काहू जुगत के तय पाइये ना धर्म नानक तिस मिले जिस लुखिया तुर कर्म
1: जिस पे मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदनी आया दास दलन तन पाए तिन पाया
1: सदा नित्य नित्य हर ध्यान सो दास दर गैर पर भान
0: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे
1: सगल संग आत्म।

0: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा रजान
0: जो वरताए साई जुगत नानक को पुर कहिया जीवन मुक्त
1: और भ्रम के सगले ठाओ जित कर रखा तैसा करना।

0: अपनी बनतया बनाई नानक की वह देह बढ़ाई।
1: इसका बल नाही इस हाथ कर्ण करावन सर्व को नाथ।
0: आज्ञाकारी बपरा जीरो ज्योत पावे सोई बन जीरो।
1: कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हरख रंग हसे।
0: कबू निंद चिंद व्यवहार कबू खूब आकाश प्यार।
1: कबू बेटा ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार।
0: कबू नित करे पापात कबू सोए है निंद जात।
1: कबू महा क्रोध विकराल कबू सर्व की होत रवाल।
0: कबू होए बहे बड़ राजा कबू पिकारी नीच का साजा।
1: कबू अब कीरत में आवे कबू पला पला कहावे।
0: जो प्रभु रखे तिभी रहे गुरु प्रसाद नाम सच कहे।
1: कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोन तारी लावे ध्यान।
0: कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान।
1: कबू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन पर मैं पर मिया।
0: नाना रूप जो स्वंगी दिखावे जे प्रभावे तिमे न चावे।
1: ज्योतिष पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोए।
0: कबू सात संगत हो पावे उस स्थान ते पहर
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश।
0: मन तन नाम रते रंग सदा बसन
1: ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समान।

0: सगले मिथार अनक जतन करे आत्म नी धरवे हर दरगे को कैसे गवे
1: जो भला कहावे
0: सर्व की रेंजा का मन होए को नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब जाने मुझसे कछ होए तब इसको सुख नाही।

0: रंग सर्व सुख होए पर पागी के सह प्राप्त होए।
1: कनक रावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप।
0: कनक रावण करने हार इसके आता है विचार।
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए। बुझे देखे करे बबेक आपे एक आपे अनेक।
0: नानक सधी रहा समाए।

0: आदर बै
1: असुराज को कहावे प्रभु के कला बिना करता है
0: जे को होए बहे दातार तिस देन हार जाने गावार
1: जिस गुर पर चाट टूटे हो रोग नानक सो जन सदा रोग
0: ज्यो मंदर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन
1: ज्यो पखान नाग चढ़ रहे प्राणी पर चरण लग सर
0: ज्यो अंधकार दीप

0: कर्ण करण जाका नेतर फोर तिसका मंत्र न जाने होर
1: अंदर मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता के
0: राज में राज जोग में जोगी तब मैं तभी सरग्रस्त में भोगी
1: क्या है भक्त है सुखाया
0: जाकी लीला की मितना है सगल देव हरे अब गाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत सगल गुरु अपने सूत
0: समत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे
1: गुण में जाको फरमाए जन्म
0: ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जागे
0: नाना वेद की नवस्थार प्रभव नासी एक ओंकार
1: नाना चल करे किन माहे
0: नाना वेद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई
1: सबका किसके सब किसके खाओ जब तक मिले
0: नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
2: नाम के तारे सुमृत वेद पुराण
0: नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार
2: नाम के तारे पुनिया सब पवन नाम के समुद्र सुन सरण
0: कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल वरदान
0: करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहे समानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात
0: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बिछाए तिसे सब भली
1: सत नाम रखा सुखदाई विश्वास सत नाम गोटे पाई
0: सत वचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत निरत पूजे जे कोए नाम जपा की गत होए
0: आप सत किया सब सत अपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी
0: करते की मित न जाने किया नानक ज्योत पावे सो वरतिया प्रभु के रंग राज जन रहे।

0: प्रभु नानक नाम रखे सब होए।
1: सेवक की मनसा पूरी पई सतगुरु ते निर्मल मत लई।
0: जन को प्रभु दयाल सेवक की ना सदा निहाल।
1: बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख प्रम गया।
0: इष्ट पुण्य साधा सब पूरी राम दास संग पूरी।
1: जिसका सातिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए।
0: सुख विसरे
1: सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया।

0: अष्टपदी।
1: जब आकार है कृष्ण दृष्टिता पापन तब कहते होता।
0: जब तारी आपन सुन सुमात तब है क्रोध के संकमात।
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर सो को किसे व्यापत।
0: जब आपन आप पाप पर्म तब मूर्ख के शोक पर्म।

0: जब इक्के हर अगम अपार, तब नरक सुर्ग को कौन अवतार।
1: जब निर्गुण गुण सह सुभाए, तब शिव सागर कहो कित ठाए।
0: जब आपे आप अपनी जोत धरे, तब कवन डर कवन कत डरे।
1: आपन चले ताप करने हार, नानक ठाकुर ब्रह्म पार।
0: अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन्म मरण को कहा विनाशन।
1: जब पूर्ण करता प्रभु धोए, तब जमित राग कहो कित होए।
0: जब अवगत अगोचर प्रभु एक, तब चित्र गोत किस पूछत लेखा।
1: जब नाथ ने निरण गोचर लगाए, तब कौन टूटे कौन बंद।

0: निरंजन निरंकार निर्वाण ते कौन को मान कौन अभिमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे ते किसे फूक कवन तृप्तावे
1: धन करावन करने हार नानक
0: जब अपनी सोपा अपन संग बनाई तब कवन माई बा मित्र सोत पाई
1: जय सर्वकला आपे परवीन तब एक देव कहां को दीन
0: जब अपन आप

0: है अपन आप आप तियारत कौन कते कौन सुने हरा
1: गो ज्ञान तूते उचा आप
2: आपे पहुंचा
0: जय अप्रच्य परपंच।

0: मैं इसका विश्राम इन देखिया जिस आप दिखाए नानक ते जन सोझी पाए तरन माहे आकाश पयाल सर्व लोग पूर्ण पित पाल
1: पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: कौन पानी पे संतर माहे चार कुंट ते दिसे समाहे वेद प्राण सिमरत मह देख शशियर सूर नखत्तर मैं एक
1: वाणी प्रभु की सबको बोले आप ढोल न कभू डोले
0: सर्व करा कर खेला खेल मोल न पाया गुण अमोल
1: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तारे ओ स्वामी ओत ओत
0: गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं इहो विश्वास
1: संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जिना सुने सब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी ये रहत सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख मानै करन करावन हार प्रभ जानै
1: अंतर बसे बार भी होई नानक दर्शन देख सब होई
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
1: जिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एकंकार
0: अनेक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कौ कहिए दूर आपे आप भरपूर
0: अंतर गा जिस आप जनाए नानक ते जन आप बुझाए
1: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे कन्हारा
0: सगल समग्री जाका तना अपन जस आप ही सुना
1: आवन जान खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
0: सब कह मद अल्प तो रह जो कुछ कहना सो आपे कह
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तनय समाए
0: इसते हुए सो नाही बुरा उरे कहो किनै कश करा।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग साध संगत जी, आप जी ने सोदा रहरा साहब बाणी के जाप सरवण किए हैं। आओ हुण हजूरी रागे भाई हरबख्श सिंह जी समूह जथे पासों कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेस आदे अनिल अनादे अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख हो है लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीस एतरा है पद पवड़ियां चढ़िया होए इक्कीस सुन गला आकास की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੁਧ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਹਿਣ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਹਿ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹਿ, ਅਚਲ ਮੂਰਤਿਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੈ ਸਾਹਾਣ ਗਣਿਜੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਤ, ਤਵਾ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਏਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਮੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਆਦੇਸੰਗ ਆਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਣਵੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬਧੰਦੇ, ਨਮੋਸਤੁ ਅਬੰਧੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੁਧ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ, ਅਭੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਧੇ ਹੈ, ਅਭੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਭੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਣ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ, ਅਸਰਗ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ, ਅਵਰਨ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਭਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ, ਅਭੰਜ ਹੈ, ਅਝੂਜ ਹੈ, ਅਝੰਜ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਅਧੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ, ਅਸੂਝ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾਹ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨ੍ਰਿਸਰੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਜੰਮ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੋਕ ਹੈ, ਅਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਅਭ੍ਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਭੀਤ ਹੈ, ਅਵਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਣ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ, ਨਿਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਭਾਣ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਣ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਭਾਣ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਾਣ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਭਾਣ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ, ਕਲੰਕੰਗ ਬਿਨਾਨੇ, ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ, ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ, ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ, ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ, ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ, ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ, ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੰ, ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਇਸਨਾਨੰ, ਨਮੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤ੍ਰ ਜੰਤ੍ਰੰ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟੇ ਇਸ਼ਟੇ, ਨਮੋ ਤੰਤ੍ਰ ਤੰਤ੍ਰੰ, ਸਦਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ, ਅਨੂਪੇ ਅਰੂਪੇ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ, ਅਧੋ ਉਰਧ ਅਰਧੰ ਅਗੰ ਓਗ ਹਰਤਾ,
परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग शेदीय भेदीय नामंग कामंग समस्तोपराजी समस्तास्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद। जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं प्रियं प्रयात छंद। अगाधे अबाधे अनंगी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वं नृणाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे गोकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद। अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद त्वा प्रसाद। आद रूप अनाद मूरत अजौन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल। नाम ठाम ना जा जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजौन आद सेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जत्र तत्र दिशा विसा होय फैल्यो अनुराग। नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्रमान सदैव मानता है एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेलन अंत को फिर एक। देव भेव ना जान ही जह वेद और कतेव रूप रंग ना जात पात सो जान ही कह जेव तात मात ना जात जा कर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चतर चक मान ही पुरतीन। लोक चौदह के बिखै जग जापै जह जाप आद देव नाद मूरत थाप्यो सभै जह थाप परम रूप उन्नीत मूरत पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गण भंजन हार। कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देस धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख अपेस अंग रागना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम। आप रूप मीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन अभंग नातम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार। सर्वगणता सर्वहणता सर्व ते अणपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जह रूप रंग अर रेख परम वेद प्राण जा कह नेत भाखत नित कोड़ सिमृत प्राण शास्त्र ना आव ही वह चित। मधुपार छंद त्व प्रसाद गुणगण उदार महिमा पार आसन अभंग उपमा नंग अनुभव प्रकाश निस्दिना नास आजान बाह साहान साह। राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्राण इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अणभूत अंग अपा अपंग गतमित अपार गुणगण उदार मनगण प्रणाम निरपैन काम। आत दुत प्रचंड मितगत अखंड आलिस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा परणाडय अंडंड पाडय चाचरी छंद त्व प्रसाद। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद। चत्रचक्र करता चत्रचक्र हरता चत्रचक्र दाने चत्रचक्र जाने चत्रचक्र वर्ती चत्रचक्र भरती चत्रचक्र पाले चत्रचक्र काले चत्रचक्र पासे चत्रचक्र वासे चत्रचक्र माने चत्रचक्र दाने चाचरी छंद। न सत्रै न मित्रै न परमंग न पितरै न कर्मंग न काय अजन्मंग जाए न चित्रै न मित्रै परे हैं पवित्रै प्रथीसै आदिसै अदृश्य कृसै भगवती छंद त प्रसाद। करते कया शिज देसै कया भिज पेसै कया गंज करमै कया भंज भरमै कया भिज लोकै कया दित सोकै कया भूत बरनै कै विभूत करनै कै राजंग प्रभा हैं कै धर्मंग तुझा हैं कया शोक बरनै कै सर्वा अभरनै कै जगतंग कृति हैं कै शत्रंग क्षत्रि हैं कै ब्रह्मंग स्वरूपै कै अनुभव अनूपै कै आदु देव हैं कै आप अभेव हैं कै चित्रंग विहीनै कै एकै अधीनै कै रोजी रजा कै रही मे रिहा कै।
कै पाख बे ऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफुल गुणा हैं कै सा हान सा हैं के कारण कुणिद हैं के रोजी देहांत हैं के राजक रहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वत्र मान्य हैं के सर्वत्र दान्य हैं के सर्वत्र गौण हैं के सर्वत्र पौन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परमं फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसनल वजू हैं तमाम रजू हैं हामेसल सलाम है सलीखत मदाम है गनीमल सिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजवल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभूत प्रभा हैं सुयुक्त सुदा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाधे सुपंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप हैं अशिज हैं अशूत हैं कै नरकं प्रणास हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुक्त स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुक्त प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं चात्री छंद

हैं, बंद हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं, चरपट छंद त्वप्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राणं, सर्वंप्राणं, सर्वंकर्मं, सर्वंधर्मं, सर्वंयुक्ता, सर्वंमुक्ता, सावल छंद त्वप्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात त्रिसाकं श्रीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वप्रसाद, कै जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशल सलाम हैं समस्तल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीपुल सिकन हैं हिरासल तिकन हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्तल निवास हैं गंजल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकंग प्रणास हैं बेहस्तुल निवास हैं कैसर बुलगवन हैं हमेशर वन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तल अजीज हैं परंग परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं आदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं कजुर अजमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुभाष हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग नंग हैं के अमितो अपंग हैं मदपार छंद त्वप्रसाद, मुणमन प्रणाम गुणगण मदाम हर पर अगंज हर नर प्रपंज अणगण प्रणाम मुणमन सलाम हर नर अखंड पर नर अमंड अनुभव नास मुणमन प्रकाश गुणगण प्रणाम जल थल मदाम अणशिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गात्मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तृत धर तुरास, आ जान वाहो एकै सदाहो ओ अंकाराद कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अणशिज गात आ जजना बात अणझंज गात अंदरंज बात, अणटुट भंडार अणठट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हरि बोल मना छंद त्वप्रसाद, करणालय हैं करकालय हैं खलखंडन हैं महमंडन हैं जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं काल कारण हैं सर्वबारण हैं त्रित के धारण हैं जाके करण हैं मन मान्य हैं जग जान्य हैं सर्वंपर हैं सर्वंकर हैं सर्वपास्य हैं सर्वनास्य हैं करुणाकर हैं विश्वंबर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणाकर हैं अजपा जप हैं अथपा थप हैं कृताकृत हैं अमृतामृत हैं अमृतामृत हैं करुणाकृत हैं कृताकृत हैं धरणी तृत हैं अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं कृताकृत हैं अमृतामृत हैं अजबाकृत हैं अमृतामृत हैं नरनायक हैं खलकायक हैं विश्वंबर हैं करुणालय हैं नृपनायक हैं सर्वपायक हैं पाव भंजन हैं अर्गंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्मवास हैं जास के जास हैं भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस वासे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री छंद, अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकास गंज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद,
नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे नृकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गणिमे हरियंग करियंग करिमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंग

श्री भगवान को भेद ना पायो। को उपतान को पूजत है पस पौ मृतान को पूजन थायो। कूर किरिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती जाओ पई। अमरी करो हाथ लै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। अमरे दुष्ट सबै तुम घाव हो आफा दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करै सब बैरन कौ आज संगरै। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ है मुझे उभरय मन काल का त्रास ने भरय। हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुरजू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखण हारे साहिब संसहाय प्यारे। दीन बंद दुष्ट के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिव जू अवतारा। काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राय ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दै जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी। सिवकण को सब गुण सुख दियो सत्रण को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दिष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने घट घट के पढ़ पढ़ की जाने। जब युद्ध करक करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करक करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आदे अनीदे अनादे असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा। ताकाओ कर पाहणे अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव काओ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भिव। आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन भिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंड जेर से तजकीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी। कहूँ भूरा जा हुआ बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आजुगा स्वरूप संयम भव। अभ्रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुजतव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है ऐ हैं। रक्षा होयता है सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताव तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वैस कैन कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ केत मैं शरण तिहारी आप हाथ तै लिहो बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरण सुभराता। किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुज भय दयाला पूरण करा ग्रंथ सतकाला। मन बांछत फल पावै सोई दूख न तसै ब्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो यह सो रसना पावई। सुनै मूढ़ चितलाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न ते नर के रह। हो जो या की एक बार चौ पई को कह चौ पई।
संबत 17 सहस पणिजय अर्थ सहस पुण तीन कहिजय भाद्र सुदी अष्टमी रविवारा तीर स्तोत्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो।

पुरुष निरपा निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। बलहारी गुर अपने दोहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। सो कहो टल गुर सेवी एहन सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। हो वै सिपत खसम दी नूर अरसों डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है।

मन मन अंदर एक तरे, महादिवस मूरत भले जिस कौ नदर करे, नानक मंगे दर्श दान कृपा करहु हरि। माझ महला पंजवा दिन रैन एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैन।

चंद्र हड़ा सोहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। श्लोक महला पहला। गुरदाता गुर हिवै घर गुर दीपक तिह लोई।

तो कसमें मिलना महला दूजा। दिसै सुनिए जानिए साओ न पाया जाए, रूला टुंडा अंधुला क्यों गल लगे ताए। पै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे, कहे सियाणिए इव कंत मिला।

प्रभ को सिमरे तिन सत बलहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन अनंत कनेरे प्रभ को सिमरे बसै हर नेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कभू न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निह चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन

नानक के प्रभु साथ अष्टपदी। जय माता पिता सुख मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्रयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम फिन माहे उधारी। अनक पुन है चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख

अकेला तैं हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नामन सदा त्याये नान गुरमुख परम गत पाइय। छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब तह पार पुराई। अनक बिघन तय आय संघारे हर का नाम तत्काल उधारे।

गंगा जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समागरी संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूढ़ अंध व्यापे नानका लियो प्रभ्यापे आदन त्यो राखुन हार तिस्यो प्रीतना करे गवार।

पार तुम त्या कौड़ी संग रचे सा छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्त्र कर माने जो हवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तुहे घर तब प्रीत पसम संग होए। अंधकूप में पतत बिकराल नानक काट लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मान जात लोक पुचारा करे दिन रात बार पे अंतर मल माया शपस नाहे कश।

मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या स्वर्ण पर निंदा सुनहे मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरहे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसन

के बलबल जाओ रहते अवर कछि अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बार पेख ना काहू पीन आवर उपदेशे आप ना करै आवत जावत जन्मे मरे जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार।

जे प्रसाद सबको माने मुखता को जस रसन बखाने। जे प्रसाद तिर रहता तर मन, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दर के मान पावे नानक पसेती कर जावे। जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत।

की अचरज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल हो, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की में मां बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी। साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा पर फुले। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग ना कतहु तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। साध संग किसो नहीं बैर।

साध प्रभु बनियाई, साध कै संग कबहू, साध कै संग ना कबहू तावे, साध कै संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध कै संग बसे थान ऊचे, साधु कै संग महल पहुँचे, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निसतारे, साधु कै संग सोतन भावे, जिस तन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नाही कछ काल दर्शन पेटत होत निहाल, साध के संग कलुपत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला, साध संग पिछड़त हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग घट घट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध किवें मां वेद न जाने, जेता सुने तेता बकियाने, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध

ज्ञानी से जन पए। नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल करीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया,

भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मनते बिन से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सात संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पे बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवान।

कै संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिक्की करै प्रतिपाल, सेवक हो गुर सदा दयाल। सिक्की गुर दुरमतमल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख ते बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हाटै। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जिय नाल समारै। गुर कै गृह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन मह सहै। आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत त्यावे। मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नहकामी, तिसको होत परापत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमे

एक कहे आप नहीं कज परम, सह सयान अपलया न जाइए, नानक ऐसा गुरबड़ भागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण घत निर्मल रीत।

मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लै मिलाए जह बा एक उस्तत अनेक।

कि नैन पाई। अनिक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमरै। साध बलहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने। एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग न लेप, मन में रखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे,

ते पावह। जिस सुख कोनत बाछ मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सो वाको करहे भली करनी, सा सोभा भज हर की सरनी। अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरगे परवान। मन पर बोधो हर

आठमुख जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इस पुनी सरदा सपूरी रब रहया साध संग हजूरी। जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए।

जब अकार्य कृष्ण दृष्टिता पापन तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात

जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छित्र लगत कह कीस। जह जो स्वरूपी जो संग समावै, तह किसै भूकव त्रिपतावै। करन करावन करन हार, नानक करते का नाहि सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माय बा मित्र सुत भाई। जय सर्व।

वेद पुराण सिमरत में देख ससी हरसु नखियत्र में एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल न कबू डोल सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक दिन में हो विसास संत जना का पेखना सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान करण करावन हार प्रभ जानै

लाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपा भर पूर अंतर गज से आप जनाए। नानक ते जन आप बुझाए।

सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु की साजी निवाजी साध संग जीओ, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की अपार कृपा सदका सेवक परिवार भाई कुलवीर सिंह जी हुंदल और बीबी जसपाल जीत कौर हुंदल, जिन्हां दी खिड़ी हुई फुलवाड़ी भाई भागवीर सिंह और बीबी नवदीप कौर, समूह परिवार वालों बच्ची ऐशलिन कौर दे जन्मदिन दी खुशियां मुख रखदे होए आ गुरु घर विखे श्री सुखमनी साहब जी की बाणी दे जाप आप जी ने सरवण किए हैं। आओ हूँ तकरीबन 12:30 बजे तक गुरबाणी कीर्तन सरवण करते हाँ और उपरंत अरदास होगी। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा। वाह।

कोई न जाने तुम्हरा अंत उचित हो। सगल समग्री तुम्हरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुम्हरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा। बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै

ते सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसान दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद जिट

ज्ञान अंजन पाए गुर सबदी नदरी नदर मिलाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।